0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Hello Nagaland, the first phase of the census is here. From June 16 to 30, visit se.census.gov.in to complete your self-enumeration online. Make sure your household is counted. Your participation supports better planning and development for our future. Our census, our development.

0: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
9: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
10: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
11: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
10: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
12: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
10: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी।

0: एटु आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज सुनिरहेका सबैलाई केटिया समयटाको अनिडियासे रियल टाइम टे ट्राफिक अपडेट मन खोलापरा लोइगिन पीएचक्यू जंक्शन मजत लगा रास्ता नर्थ बाउन्डे भारी ट्राफिक देखाइ आछे किन्तु साउथ बाउन्डे हल्का हल्का ट्राफिक देखाइ आछे अलग रास्ता लोबो कोइले लोबो पारे ओल्ड मिनिस्टर्स हिल पर लोइगिन जेल कलोनी पीएचक्यू जंक्शन पर लोइगिन मेजर जंक्शन मजत लगा रास्ता नर्थ बाउन्डे मॉडरेट ट्रैफिक देखाई से माने ट्रैफिक तो आसे किंतु इमान भारी भी नहय इमान हल्का भी नहय मजते आसे होली भी साउथ बाउन्डे तो होले हल्का ट्रैफिक देखाई से अलग रास्ता लोबो कोले लोबो पारे पारामेडिकल पर लोइगिन टी मॉडल और आईजी नहयलेबा लेडी स्माइल्स रोड TCP ব্রা লৈগিন রাজু পয়েন্ট মাজত লাগা রাস্তা নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড দুইটা দেবী মডারেট ট্রাফিক দেখাই আছে রাজু পয়েন্ট ব্রা লৈগিন সেন্সাস পয়েন্ট মাজত লাগা রাস্তা দেবী নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড দুইটা দেবী মডারেট ট্রাফিক দেখাই আছে আর হাই স্কুল জাংশন ব্রা লৈগিন সেন্সাস পয়েন্ট মাজত লাগা রাস্তা দেবী নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ডে ট্রাফিক টু মাজতে দেখাই দিয়ে আছে আর NHAK জাংশন পর লইগিন সেন্সাস পয়েন্ট মাজত লাগা রাস্তা নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড দুইটা দেবী হালকা হালকা ট্রাফিক দেখাই দিয়ে আছে হনে থাকা সববিলাক এটু থাকিছে 11:30 লাগা রেল টাইমতে কোহিমা টাউন লাগা ট্রাফিক আপডেট আপনার খান প্রোগ্রাম নোটে জুড়ি থাকিবে আকবি আনি দিয়া হব রেল টাইমতে ট্রাফিক আপডেট
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch SmartPay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: FM Tragoban. News, music and entertainment.
4: This is FM Tracker
3: FM 103 megahertz.
0: जी हाँ अपना कन हुनी ऐसे आकाशवाणी एफएम ट्रैक अपन 110 मेगाहर्ट्ज उन्हीं ढगा सब बिलाग अपना कन सब के दोबारा स्वागत करें ऐसे हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम अरेटिया समय जब अपना कन कारण यानी दिया से आरजीएस चॉइस जी हाँ मुझे लगा कि सुमंत पसंदीदा गीत कन मुझे लाइनअप करेगी ना से प्रोग्राम अपना कन जून जून जगह दे था कि लिबी ट्यून इन करी भी और गीत कन हुनी गिना एंजॉय करी था कि भी तो सबसे पहला जे अनिदिया से दिल का रिश्ता फिल्म के गेस्ट गाए से कुमार सानू अलका याग्निक और कॉरस

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल लगा वास्ते उन्हें खुनी थका सब बिलक खुनी वो हसी तो फसी फिल्म की गीत गए से विशाल शेखर चिन्मयी और खरस

21 फ्रेमत हुनेले रिगेट गाई थाकिसे अरिजित सिंह आरु अमिता भट्टाचार्या हुनी थाका सबैलाग प्रोग्रामत एबार दुसरा गीत दिएसे सावरिया फिल्म की गीत गाएसे पार्थिव गोहिल।

गुलियों की रसलीला रामलीला फ्लिमत अपनालोके भूमि ट्रेविडी लगा वास्ते उनिले उनी ढगा सब लागे टिकेट कारण म्यूजिक दिसे हेमु गाठवी और लिरिक सिद्धार्थ गरमी प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत दिया से दिल्ली सिक्स फिल्म के गीत गाय से रेखा श्राधा पंडित सुजाता मजुमदार और खरस म्यूजिक दिसे ए आर रेमंत और लिरिक प्रसून जोशी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मैक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर यह वक्त है रेनबो हेल्पलाइन का। और रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। आप सब जानते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि आज किस टॉपिक पर बात होने वाली है। अगर ये जानते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य हमारे साथ उपस्थित हैं एज एन एक्सपर्ट जो कि है न्यूट्रिशनिस्ट। अगर ये भी जानते हैं तो आपको बता दूं कि अब इस पर आपको ज़्यादा देर नहीं लगाना है, आपको फटाफट अपने जो सवाल हैं वो लिखकर भेज देने हैं। क्यों? क्योंकि किशोरों के लिए जो भी खान पान है ना उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं जिस तरह से आजकल नोटिस कर रही हूँ ना, जितने भी एडोलेसेंट्स हैं वो जिस तरह से फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, अपने खान पान की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिटनेस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, मतलब उनको बहुत एक एक चीज़ की नॉलेज है कि किस तरह से क्या खाना है, कितना खाना है, किस प्रोपोर्शन में उनको क्या चीज़ लेनी है, सब कुछ वो नॉलेज में रखते हैं। वो सारे एडोलेसेंट्स भी हैं लेकिन ऐसे किशोर भी हैं जो बिल्कुल खाने पीने पर मतलब लापरवाही से एकदम फॉलो करते हैं डाइट को और कुछ भी खा लेते हैं। तो इन सब के बीच आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस तरह से आपके आसपास जो किशोर हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या कमियां देख रहे हैं, क्या अच्छाइयां देख रहे हैं और किस तरह से आपका जो सवाल है वो बनकर आ रहा है, निकल कर आ रहा है, आप डिसाइड कीजिए। मैं तो सबसे पहले वेलकम करती हूँ डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य का जो कि है न्यूट्रिशनिस्ट, स्टूडियो में उपस्थित हैं और आज किशोरों के लिए आदर्श खान पान क्या होना चाहिए वो इस टॉपिक पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो डॉक्टर कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
2: धन्यवाद, नमस्कार सबको। और ये बहुत बहुत प्रमुख मुद्दा है और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे इनवाइट किया और इस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया।
1: और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आज हम आप सभी किशोरों के लिए ये डेडिकेट कर पा रहे हैं इस शो को। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरत है और बहुत सारी अवेयरनेस है जिसकी कमी की वजह से वो अपने डाइट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उन सब के बारे में इस शो में आपको बिल्कुल नई जानकारियां मिलने वाली हैं, बहुत अनोखी जानकारियां मिलने वाली हैं जो अभी मैं भी सरप्राइज्ड हूं कि अभी बहुत सारी चीज़ें इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी की जा रही हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। और आप सबको पता है या नहीं ये आप जाने, लेकिन पता है तो आप लाभ कैसे उठा सकते हैं और नहीं पता तो बिल्कुल इसके बारे में डिटेल में पूछिए, जानिए, समझिए और अपने आप को एकदम फिट रखिए। किस तरह से सवाल पूछेंगे वो मैं बता देती हूँ। सवाल पूछने के लिए 2342-1080 या 2342-1084 पर आपको कॉल करना है। अगर दिल्ली NCR के बाहर से कॉल करें तो इन नंबर से पहले 011 ज़रूर लगाइए। और अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखकर भेज दें तो ये भी कर सकते हैं। 9868107070 पर आपको अपना सवाल लिखकर भेजना है। 9868107070। तो अब एक गाना हो जाए और उसके बाद लौट कर आते हैं और बात करते हैं डिटेल में कि किशोरों के लिए आदर्श आहार क्या होना चाहिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आकाशवाणी रेनबो और आज हम बात कर रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में हेल्थी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंट्स पर। हमारे एक साथ एक्सपर्ट जुड़ी हैं डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप सबके सवाल के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आपके सवाल भी आने शुरू हो गए हैं तो मुझे लग रहा है कि उनसे ही सारा काम हो जाएगा आज। तो फटाफट अगर अभी तक आपने अपना सवाल नहीं भेजा है कि आपके घर में भी कोई किशोर हो सकता है या आपके आसपास हो सकते हैं या आप खुद हो सकते हैं तो फटाफट फ़ोन घुमाइए। अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जिस तरह से आप फेस कर रहे हैं जो प्रॉब्लम खाने पीने को लेकर या फिटनेस को लेकर, वो फटाफट फ़ोन घुमाइए और हमारी एक्सपर्ट से पूछ डालिए। आज ही अपने सवाल का जवाब लीजिए और अपने आप को फिट रखिए। 2342-1080 या 2342-1084, ये दो नंबर्स हैं जिनको आपको डायल करने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, 2342-1080 या 2342-1084 पर आप कॉल कर सकते हैं या आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। उसके लिए नंबर है 9868107070 9868107070। तो सबसे पहले डॉक्टर कृष्णा यही जानना चाहेंगे कि किशोरावस्था किस उम्र के बीच में आती है और इसमें खास ज़रूरतें क्यों हो जाती हैं खान पान में और फिटनेस के लिए।
1: हाँ बिल्कुल, किशोर अवस्था वो उम्र का पड़ाव है जो आपके 10 साल से 19 साल तक के बालक और बालिकाएं होती हैं वो किशोर अवस्था के उसमें आती हैं। और इस समय हमारे लिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि बच्चा एक बालपन से युवा अवस्था की तरफ बढ़ने की तरफ जा रहा है और इस समय जो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बच्चे में प्यूबर्टी आना शुरू होता है जो युवाएं बनने के लिए उनकी हाइट में भी बदलाव आना शुरू होता है। तो ग्रोथ स्पर्ट जो आप कहें तो वो 10 से 19 साल के ही एज ग्रुप में देखा गया है। तो अब जैसे लड़कियां हैं जो किशोरियां हैं उनमें पीरियड्स शुरू होना या उनका जो यूट्रस है वो अभी डेवलप होना शुरू होता है तो हॉर्मोन्स उनके भी बहुत चेंजेस होते हैं। तो इस समय उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, खून की कमी पाई जाती है, कैल्शियम और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर इस समय न्यूट्रिशन का खास ध्यान ना रखा जाए, उनके जो विटामिन्स इनटेक है या प्रोटीन का इनटेक है या एनर्जी का इनटेक है, अगर वो उस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर ये आगे जाके हम एक कमज़ोर युवा को बड़ा करेंगे
0: और आगे उनकी जो समस्याएं हैं और भी बड़ी होती जाएंगी क्योंकि अभी से अगर मतलब ध्यान नहीं दिया गया तो। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया किशोरावस्था क्या होती है और खास जरूरतें होती हैं क्योंकि बहुत सारे शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं, मानसिक बदलाव हो रहे होते हैं और इन पर ही हम बात करेंगे कि क्या खाना होता है, खान पान होता है वो मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हमें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जिसको कहते हैं उनसे देखने को कई बार मिलता है अपने पेरेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति। तो ये क्या खान पान से भी कम हो सकता है क्या, आपको मतलब क्या लगता है?
1: खान पान का कुछ हद तक है इसमें
0: रोल है,
1: बट ये है कि इस समय क्या होता है कि बच्चे उस कंफ्यूजन वाले स्टेज में आ जाते हैं क्योंकि वो ना वो बच्चे रह जाते हैं ना वो युवा होते हैं क्योंकि वो जो प्रमुख जो डिसीजंस लेने होते हैं तब उनको बोला जाता है कि तुम अभी बच्चे हो और जब क्या कहते हैं उनको कुछ काम के लिए बोला जाता है या उनकी जिम्मेदारियां जब बढ़ानी होती है तो उनको बोला जाता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन स्टेज पे भी रहते हैं, प्लस उनकी जो डाइट का टाइमिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा एब्सर्ट हो जाता है। मीन्स आप देख लीजिए कि जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं, बाल और बालिकाएं हैं, उनमें स्कूल का प्रेशर बढ़ जाता है, उनके कोर्स पढ़ाइयां बढ़ जाती है क्योंकि अभी वो बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, उनकी क्लासेस जो है उनका सिलेबस ज्यादा होता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइमली अपने खान पान पे ध्यान दे। तो उसमें उनको झटपट कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिससे उनका पेट भर जाए या ऐसे कोई चीजें मिल जाए वो वही खा के फिर संतुष्ट हो जाते हैं, जिससे उनको जो न्यूट्रिएंट्स जो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनकी कमी हो जाती है और इस वजह से मूड स्विंग्स भी होते हैं। कुछ बच्चे टाइम पे ना खाना खाने से उनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो फिर उनमें मूड उनके अपसेट हो जाते हैं। तो ये भी चेंजेस देखे गए हैं। तो टाइमली खाना ना खाना, न्यूट्रिएंट्स का ना मिलना, इस वजह से भी मूड स्विंग्स देखे गए हैं।
0: अच्छा, तो मूड स्विंग्स हमें यही पता था कि एक एज में होते ही हैं, इस एज में होते ही हैं, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर सही खान पान हो तो काफी हद तक कंट्रोल।
1: हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं, उसके साथ साथ जो डिमांड है बॉडी की इस टाइम पे, जो रिक्वायरमेंट होती है हर चीज की, वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। जो हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस भी कहता है कि कुछ चीजों की, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, क्योंकि अभी जो इनकी हाइट बढ़ना है या जो इनकी हड्डियों की जो बनावट है उसमें मजबूती लाने के लिए कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो बोन हेल्थ अगर हम कहें, बोन हेल्थ और जो इनका जो फर्टिलिटी है या जो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो बहुत जरूरी होते हैं इस समय।
0: बिल्कुल, और आप सब जो अवेयरनेस है वो सब में है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो यही बता रहे हैं कि अवेयरनेस तो है बट फॉलो नहीं हो पा रहा है। उनके आसपास जो लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो यही है कि आज फास्ट फूड का ज़माना है। तो इसी तरह का एक मैसेज मुझे आया है तो मैं सोच रही हूँ इसको ले लेती हूँ। अमन कुमार बागपत से लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि फास्ट फूड का बड़ा कमाल है, पहले विज्ञापन का जाल है, फिर जेब का बुरा हाल है, और बाद में अस्पताल है। बर्गर पिज्जा खाते खाते घर की रोटी भूल गए, ऊपर से प्लास्टिक का कचरा अलग, पर्यावरण भी बोले भाई बस कर अब। मेरा सवाल है, इन्होंने लिखा है कि क्या फास्ट फूड सिर्फ खराब खान पान की आदत है, या फिर ये दिखावे, फिजूल खर्ची, आलस, मोबाइल की लत और अपनी संस्कृति से दूर जैसी कई दूसरी आदतों का पैकेज ऑफर भी है। बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए।
1: थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल लोगों का जो रुझान है, और बोला जाए कि जस्ट झटपट जो मिल जाए, झटपट जो बन जाए वो खा के हम लोग अपना काम चलाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, और आजकल माँ बाप दोनों ही कामकाजी हो चुके हैं, तो अब उनको भी लगता है कि बच्चों के लिए ऐसी कोई चीज दी जाए जो झटपट हो जाए। और विज्ञापन का कमाल तो है ही, क्योंकि हमें वो ऑप्शंस देते हैं कि आप क्या ले सकते हैं। लेकिन आजकल इस पे भी बहुत अवेयरनेस का काम सरकार कर रही है, और ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो जल्दीबाजी में जो चीजें बनती हैं या जल्दीबाजी में जो चीजें दी जाती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स और हाई फैट, हाई सोडियम भी उसमें, नमक की भी मात्रा ज्यादा होती है, शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो वो आगे चल के आपको नुकसान भी दे सकती हैं। तो उसके कुछ और भी तरीके किए जा सकते हैं, तो उससे आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके आसपास स्वास्थ्य कर्मी हैं या आप डाइटिशियंस हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या आप अपने यहाँ के डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या तरीके किए जा सकते हैं कि आप फास्ट फूड को रिप्लेस कर सकते।
0: ओके, इस पर हम बात करेंगे। अभी मधुबनी बिहार से भी मोहम्मद मजहर, इन्होंने लिखा हुआ है, बच्चों को बाहर के पॉलीपैक फूड जैसे आलू चिप्स, कुरकुरे, भुजिया वगैरह नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें खतरनाक केमिकल्स होते हैं, पाम ऑयल होता है, और हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, कैंसर जैसी समस्या भी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिलहाल मेरे पास डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य बैठी हुई हैं स्टूडियो में, और आप सबके सवाल जो है वो शामिल कर रहे हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि एकदम स्वस्थ रहें हमारे किशोर, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य हैं, और उन पर काफ़ी कुछ टिका हुआ है, उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी कुछ टिका हुआ है। तो हेल्थी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंस, इस पर आज चर्चा कर रहे हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य से, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। फ़ायदा उठाइए, फटाफट फोन करिए अपने सवाल के साथ 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करना है आपको। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए, नंबर है 9868107070 9868107070। रेनबो हेल्पलाइन, बबिता त्रिपाठी के साथ।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तक।

0: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है, किशोरों के लिए आदर्श आहार क्या होना चाहिए उस पर बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य से, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप सबके सवालों का जवाब दे रही हैं, मेरे भी सवालों का जवाब दे रही हैं। और फिलहाल मेरे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, पहले तो बोथ मैम को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून
1: जी। राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ
0: जी।
1: मैम, पहला सवाल तो मेरा ये है कि हमें जो खाना खाते वक्त पानी जो पीते हैं, वहाँ खाना खाने के बाद पीना चाहिए, खाना खाते वक्त बीच बीच में पीना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कई लोग कहते हैं कि खाना खाने से पहले आपको सलाद खाना चाहिए और खाना खाने के बाद फ्रूट खाने चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? तीसरा सवाल दूध की बात करते हैं कि दूध में ये कहा जाता है कि किशोरावस्था में कौन सा दूध हमें बेस्ट रहेगा जो पीना चाहिए? इन दिनों थैली का भी आ रहा है, बॉटल्स का भी आ रहा है, डब्बे का भी आ रहा है, भैंस गाय का भी आ रहा है, तो बेस्ट दूध कौन सा रहेगा? और चौथा और आखिरी सवाल,
0: एक बार में एक ही सवाल पूछिए, और जो क्योंकि मैम को याद रख पाना और सबका प्रॉपर जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहला सवाल आपने पूछा पानी के लिए, खाते वक्त पानी पीना चाहिए या खाने के बाद पीना चाहिए?
2: ओके, तो सबसे पहले हम आपका पहला सवाल लेते हैं।
0: हाँ, शॉर्ट में जी।
2: ये है कि देखिए, अगर आप खाना खाते साथ साथ में अगर आप पानी भी पीते रहेंगे तो आपका जो आप खाना खा रहे हैं वो पूरा नहीं खा पाएंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस मील की, जो आपकी कैलोरीज उस मील टाइम पे आपको चाहिए वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप पानी पीते रहेंगे। और बेसिकली पानी ज्यादा तभी पीते हैं जब आपके खाने में ऐसी चीजें होती हैं जो पचाने में या आपको लेने में, सॉलो करने में या उसको डाइजेस्ट करने में उस समय दिक्कत होती है। ज्यादातर स्पाइसी फूड्स होते हैं आपके, मिर्च वाली चीजें होती हैं, तो इससे क्या होगा नुकसान कि आपकी जो इनटेक है वो कम हो जाएगी, जो आपकी न्यूट्रिएंट चीजें हैं वो नहीं जा पाएंगी। तो खाना खाने के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए या उससे पहले थोड़ा सा ले सकते हैं।
0: ओके मैम, कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? कहते हैं कई लोग आधे घंटे, कोई लोग एक घंटे, या कोई लोग कहते हैं उसके बाद भी लेना।
2: 15-20 मिनट बाद भी आप पी सकते हैं।
0: पी सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बोलिए।
1: हाँ जी मैम, दूसरा सवाल ये है कि खाना खाने से पहले खाना कहा जाता है कि सलाद खाओ और खाना खाने के बाद फ्रूट खाना चाहिए, कहाँ तक सही है?
0: खाना खाने से पहले सलाद और खाने के बाद फ्रूट, कितना सही है?
2: ओके, ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ले लीजिए कि जो डायबिटिक हैं या जिनको अपनी वेट कम करना है तो उनको हाई फाइबर डाइट उनके डाइट में बढ़ाया जाता है, या उन लोगों के जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनमें ये सजेस्ट किया जाता है, उनको ये सुझाव दिया जाता है कि वो पहले एक प्लेट सैलेड लें, उसके बाद वो रोटी या चावल जो भी ले रहे हैं वो लें, या उसके बाद भी फल अगर ले रहे हैं तो वो एडेड आपको कैलोरीज और बढ़ा देगा। मतलब बाद में अगर आप फ्रूट लेते हैं तो आपको कैलोरीज बढ़ाएगा।
0: ओके,
2: तो मेरे हिसाब से तो हम यही सुझाव करेंगे कि आप सैलेड तो जरूर ले सकते हैं खाना खाने से पहले, लेकिन खाना खाने के बाद अगर आप फ्रूट लेंगे तुरंत बाद तो वो आपकी कैलोरीज बढ़ाएगा।
0: ओके, तो जिनको कैलोरीज नहीं बढ़ानी है तो उन्हें फ्रूट अवॉइड करने चाहिए। अब किशोरावस्था से जुड़ा क्या सवाल है आपका?
1: हाँ मैम, तीसरा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों दूध किस्म किस्म मार्केट में आ रहे हैं, तो बेस्ट दूध कौन सा रहेगा? थैली का भी आ रहा है, बॉटल का भी आ रहा है, मशीन का भी आ रहा है, टोकन का भी आ रहा है, या फिर जो है
0: बेस्ट दूध का भी होता है? बेस्ट दूध थैली वाला या इतना तो ऑब्वियसली सबको समझ में आता है कि अगर फ्रेश ले रहे हैं तो हम फ्रेश बेस्ट रहेगा। कोई और स्पेसिफिक सवाल आपका?
1: हाँ, चौथा सवाल मैम ये है कि

0: मार्क के लिए, क्योंकि हम 10th और 12th एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें मतलब हमारा 50% 70% करियर जो है दाव पे लगा होता है, तो माइंड के लिए बेस्ट डाइट कौन सी रहेगी? अखरोट रहेंगे, बादाम रहेंगे, पिस्ता केसर रहेगा, ये बताएं।
1: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच क्वेश्चन
0: बहुत
1: करने
0: बहुत
1: के लिए,
0: शुक्रिया।
1: थैंक यू। तो इन्होंने जिस तरह से बोला कि जो किशोरावस्था में एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके पास प्रेशर रहता है पढ़ाई का, तो ऐसे में कहते हैं अखरोट खाओ, बादाम, पिस्ता, इसमें वो पूछना चाह रहे हैं कि कितना सही है और क्या खाना
2: हाँ,
1: चाहिए।
2: इसमें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि एक तो अपना मील टाइम पे लें बच्चे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
1: और सबके
2: और
1: पास मुझे लगता है बादाम पिस्ता सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है।
2: मूंगफली ले सकते हैं, मूंगफली को एक तरह से गरीबों का बादाम भी बोला जाता है।
1: हाँ।
2: तो जैसे रात में भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाग रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये मंच करने के लिए अगर वो चिप्स कुरकुरे ना खा के
1: ये
2: वो
1: सब
2: इस तरह
1: तो
2: के
1: बेटर
2: नट्स
1: है।
2: ले सकते हैं।
1: जी, एक नट्स पर एक सवाल और मुझे दिख रहा है, नट्स पर क्या एक अंजीर पर सवाल है कि अंजीर को से खाने से, एक दिन में एक अंजीर खाने से क्या बॉडी को सारे विटामिन्स मिल जाते हैं? प्लीज बताइए ये किसका मैसेज है, ये तो नहीं लिखा, लेकिन इस तरह की कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है।
2: देखिए, अगर हम तुलना करें तो एक ड्रग है, एक दवाई को हम कभी भी खाने से तुलना नहीं कर सकते कि आपने प्रॉपर एक फ्रूट ले लिया या आपने एक रोटी खा लिया और आपको सारे विटामिन्स मिल गए, तो इसलिए हम उसके तुलना नहीं कर सकते। हाँ, विटामिन्स हर फ्रूट में ज़्यादा होता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप कोई भी फल अगर आप लेंगे तो उसमें आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि आप अंजीर ही खाएंगे तभी आपको वो सारी चीजें मिले, और उसकी जगह आपने बनाना खा लिया तो आपको वो नहीं मिलेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है।
1: एक चीज, अब जो मेन हमारा टॉपिक है आज का, उस पर हम आते हैं कि आहार क्या लें किशोर, जो उनके लिए बहुत जरूरी है, तो किस तरह की चीजें हैं जो अपने डाइट में वो शामिल करें, और पॉसिबल हो तो एक चार्ट बताइए जिस सुबह से लेकर रात तक का, कि क्या क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए, सुबह क्या लेना चाहिए, दोपहर में उनकी डाइट में क्या होना चाहिए और शाम को क्या होना चाहिए।
2: देखिए, सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको एक आंकड़ा शेयर करना बहुत जरूरी समझूंगी।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जो नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर सर्वे का जो डेटा आया है अभी, जो आपका 6th डेटा आया है, वो ये कह रहा है कि जो ओबेसिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, और महिलाओं में ये ओबेसिटी आपकी 24% से 30% हो चुकी है।
1: अच्छा,
2: तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो किशोर अवस्था में जो खान पान है या जो बाल अवस्था में जो खान पान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वो जाके आगे जाके जो अडल्ट बन रहे हैं तो उनमें वो चीजें पाई जा रही हैं। तो इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं? जो हेल्दी डाइट है, तो हेल्दी डाइट में सारे जो आपके फूड ग्रुप्स आते हैं उसका, उसको समाकरण करना, उसको हमारे खाने में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जैसे ज्यादातर देखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में या तो बहुत ज्यादा होता है या फाइबर्स या सिर्फ प्रोटीन, क्योंकि आजकल लोगों को मसल्स बिल्ड करना है या वेट लॉस करना है तो सिर्फ प्रोटीन ही पे ही वो ज्यादातर
1: फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल
2: फोकस कर रहे हैं, और जो बाकी चीजें हैं उसको भूलते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इस तरह से खाद्य को खा लिया जाए, जो खाद्य के जो अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं उनको समाकन किया जाए, खाने में लिया जाए, जैसे आपके प्रोटीन से रिलेटेड जो फूड ग्रुप्स हैं और आपके विटामिन्स मिनरल्स रिच जो फूड ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और आपके आयरन जिसमें मिले, सब चीजों को लेना जरूरी है। तो सवेरे से अगर रात तक का हम एक किशोर का बनाना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि हम शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से ही करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग में हम जिस तरह से अभी नट्स की बात हो रही थी, तो हम नट्स दे सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में।
1: अच्छा,
2: कि वो एक मुट्ठी भर कुछ भी, चाहे वो मूंगफली हो या बादाम हो चाहे अखरोट हो, कोई भी चीज भिगो के उसको लिया जा सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास काजू बादाम ही आपको लेना है, आपके पास अगर मूंगफली है तो वो भी आप ले सकते हैं
1: और भिगो के लेना,
2: भिगो के, या आप जैसे पहले काले चने और गुड़ लिया जाता था वो भी बहुत अच्छी चीज है जो शुरुआत दिन की उसके साथ की जा सकती है।
1: ओके,
2: शुरू मॉर्निंग में क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो उस समय एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो एक अच्छा नाश्ता होना चाहिए, अनाज वाला नाश्ता होना चाहिए, ना कि कुछ एक ही चीज लेके या एक सैलेड लेके चले जाएं।
1: ज्यादातर बच्चे दूध पी के चले जाते हैं,
2: दूध पी के चला जाते हैं, तो उस समय आपको कुछ ग्रेन्स वाला नाश्ता जरूर होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: और वो जल्दी जो बन जाए, वो जैसे आप दलिया दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं या कोई रोल बना के दे सकते हैं जिसमें सब्जियों को अंदर चपाती में डाल के या पराठे के साथ, तो वो झटपट भी हो जाता है और बच्चे आराम से उसको ले भी सकते हैं।

0: हैं स्कूल जाते टाइम. तो इस तरह से अनाज की मात्रा मॉर्निंग में ही बच्चे को मिल जाती है, तो एक अच्छा कैलोरीज अच्छे न्यूट्रिएंट का लोड मिल जाता है बच्चे को. उसके बाद आपको अगर देखा जाए तो मिड मील जिसे हम कहते हैं, जो आपका 10 से 11 बजे वाला टाइम होता है, उस समय आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं. उसके बाद लंच का टाइम होता है, लंच में आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, सेहत की थाली होनी चाहिए जिसमें सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए, जिसमें आपकी रोटी या कार्ब्स आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आने चाहिए, रोटी या राइस. फिर दाल, आपका पल्स वाला ग्रुप आता है जो प्रोटीन वाला ग्रुप है, उसमें से दाल होनी चाहिए. विटामिन एंड मिनरल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जियां आती हैं, सैलेड आता है, तो वो भी होना चाहिए खाने में. और साथ में आप कर्ड दे सकते हैं डाइजेशन बेटर करने के लिए. तो इस तरह से एक बैलेंस मील लंच में जरूर होना चाहिए. फिर शाम का जो टाइम है उस समय भी बच्चे खेलने जाते हैं, एकेडमी जाते हैं या खेलकूद करते हैं, या कॉलेज से आने का टाइम होता है, तो उस समय भी बच्चों को आप कुछ हाई प्रोटीन चीज दे सकते हैं या कोई शेक्स दे सकते हैं वहां पे. ज्यादातर देखा गया है कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो एकदम एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है. उसकी उसको रिप्लेस किया जा सकता है बहुत अच्छे से हमारी देसी चीजों से. जैसे हम छाछ दे सकते हैं, मसाला छाछ बन सकता है घर पे, लस्सी दे सकते हैं, कोई भी दूध का शेक बना के दे सकते हैं फ्रूट्स को ब्लेंड करके उनके साथ. तो इस तरह से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. नींबू पानी भी है. और फिर रात का खाना इस तरह से पूरा बैलेंस करके आप मील बनाया जा सकता है.
1: ये आपने बहुत अच्छा एक तरह से आपने बताया. रात के खाने में वही चीजें रिपीट कर सकते हैं या फिर कुछ खास ध्यान रखना है रात को?
0: खास ध्यान कुछ नहीं है, इसमें भी आपको बैलेंस ही देना जरूरी है. आपका प्रोटीन इंटेक भी प्रॉपर होना चाहिए, आपके विटामिन्स की सैलेड वेजिटेबल्स फाइबर्स इनका भी इंटेक बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि हमें डिनर में सिर्फ सैलेड लेना है वेट लॉस के लिए. अगर इस तरह से आएंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जो है इस युवा इस एज ग्रुप को उसमें फिर कमी हो जाएगी.
1: तो किशोरों को वो चीजें फॉलो नहीं करनी है, वो क्योंकि आजकल बड़ा फैशन में हो गया कि रात का खाना हमें कम लेना है या पहले ही खा लेना है या फिर रात में बिल्कुल नहीं खाना है, हल्का रखना है. तो ये सब चीजें वो सारे किशोर भी फॉलो कर रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो इतने ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस या क्या कह सकते हैं, जैसे उनको मॉडलिंग में जाना हो इस तरह का कुछ पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं और इससे न्यूट्रिशन की कमी पाई जा रही है जैसा देखने को मिल रहा है.
0: इसमें बबीता जी मैं ये कहना चाहूंगी कि इसी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे जो है अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग या आप ये देख लीजिए कि वो एक ही तरह की चीजें या डिनर बिल्कुल स्किप कर रहे हैं
1: और ज्यादातर चीजें तो उन्हें पसंद ही नहीं होती हैं कि ये खाना नहीं है, कुछ चटपटा बना है, कुछ अच्छा बना हुआ है. अच्छा इन द सेंस उनके लिए जो अच्छा कहलाता है तला भुना, वो अगर बना हुआ है तो ही अच्छा है वो, और वो उन्हीं चीजों के लिए हाँ कर रहे हैं. तो ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है उनको खिलाने में. अभी एक सवाल भी आया था मेरे पास कि जो अभी कॉल कट गई, उन्होंने कहा कि बच्चे कुछ सब्जियां हैं जो बिल्कुल खाना ही नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसे में क्या करा जाए?
0: हाँ देखिए, ये ना एक तरह से व्यवहारिक प्रॉब्लम भी है, मतलब अगर देखा जाए कि इनका बिहेवियर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि अगर इन्हें बचपन से जो चीजें नहीं सिखाई गई हैं या नहीं इंट्रोड्यूस की गई है, नहीं पहचान कराई गई है, तो वो बच्चे उस चीज को पसंद नहीं करते. और कई बार ये भी देखा गया है कि जो माँ को पसंद नहीं होती है वो चीजें
1: बनती नहीं
0: बच्चे के लिए, वो ऑफर नहीं करती है, या अगर माँ को ठंड लगती है तो बच्चे को वो ज्यादा स्वेटर्स पहना देते हैं. उसी तरह खान पान या घर के खान पान का भी बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आपके घर में दाल एक ही टाइम बनती है तो वो एक ही टाइम बनेगी
1: जी,
0: तो बच्चों का भी व्यवहार वैसा हो जाता है. उसी तरह जैसे घिया तोरी आपके घर में नहीं बनती है, आपके बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके घर में वो चीजें अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, उसका व्यवहार ही नहीं सिखाया गया है. तो वो फिर बड़े होके भी, वो किशोर अवस्था तक बच्चों में क्या देखा गया है कि फिर वो उस चीजों को पसंद नहीं कर पाते, या आप कह सकते हैं कि उनमें वो टेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाता है कि ये चीजें भी खाने की होती है. तो फिर इसमें ये कर सकते हैं कि आप अगर वो सब्जियां या आपको पता है कि ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है. जैसे आप घिया अगर बच्चे नहीं पसंद करते तो घिया का रायता बनाया जा सकता है. घिया को ग्रेट करके उसको स्टफिंग करके उसके चपाती या अलग चीज़ें भी बन सकती है. आजकल जैसे खीरा है और आपको इस तरह से कोल्ड सूप्स भी बनते हैं.
1: लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पसंद नहीं आता है. तरुण कुमार जी भी कह रहे हैं कि इनको गर्मी के दिनों में अंडा खाने का बहुत मन करता है और कभी कभी मटन चिकन का भी मन करता है, और हैवी डाइट लेते हैं, गैस की समस्या हो जाती है.

0: रहती है तो क्या करें?
1: देखिए, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है कि आप गर्मियों में अंडा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोटीन रिच चीज़ें तो आपको हमेशा ही लेनी है, बट हाँ आपका डाइजेशन ठीक करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए. तो उसके लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके दिनचर्या में, और आपकी जो मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक है तो आप हाई प्रोटीन कोई भी डाइट ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं. लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आपकी सॉल्ट इनटेक है और जो फैट इनटेक है उसको ज़रूर हमें कम करना चाहिए हमारे पूरे दिनचर्या में. जो थोड़ा सा नमक कम और थोड़ा सा तेल कम अगर इस्तेमाल किया जाए खाना बनाने में ही, तो वो अगर हैबिट में ही आ जाए तो जो हाइपरटेंशन की दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं आजकल, या इंडाइजेशन बहुत हो रहा है, लेट नाइट खाना डिनर करने की वजह से भी इंडाइजेशन होते हैं, तो ये सबको भी आप ठीक कर सकते हैं.
0: ओके, अब अंडे की बात हुई तो मैं सोच रही हूँ गाना भी अंडे के ऊपर ही होना चाहिए. लेकिन आप सबके सवाल अगर अभी भी रह रहे हैं तो फटाफट फ़ोन घुमाइए 2342-1080 या 2342-1084, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए 9868-107070 पर. आज हम बात कर रहे हैं किशोरों के लिए आदर्श आहार क्या होना चाहिए. डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं, तो रेनबो हेल्पलाइन का पूरा लाभ उठाइए. आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी.

0: और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों
3: रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: यह आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है। सरकार की तरफ से किशोरों के आहार के लिए, उनकी फिटनेस के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, खास ध्यान दिया जा रहा है, ये तो पता ही नहीं था। और अगर आपको पता था तो क्या आपने लाभ उठाया, और नहीं पता था तो डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो हमें बताने वाली हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका लाभ उठाएं, क्योंकि हमें कई चीज़ें होती हैं जो पता नहीं होती, हमारे एडोलेसेंट्स को नहीं पता होती हैं, और वो जाकर कंसल्ट करें कि उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उनकी फिटनेस पर जो कोई भी अगर उनको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, या उनके मानसिक व्यवहारिक जो चेंजेस हैं उनके ऊपर कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी कम से कम मुझे तो नहीं थी। डॉक्टर कृष्णा बताने के लिए धन्यवाद, और फिलहाल जो हमारे लिसनर्स हैं उनको डिटेल में बताइए, बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ जी बबीता जी, ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में चर्चा करना, क्योंकि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ये एक योजना है, ये प्रोग्राम है जो 2014 में लॉन्च हुई है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी दिल्ली सरकार में अलग से डेडिकेटेड आपके एडोसेंट क्लिनिक्स चलती हैं जिसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल रूटीन ओपीडीज होती हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, किशोर अवस्था अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, वो झिझक सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए अलग से क्लिनिक बनाई गई है, सरकार ने बनाया है, प्रावधान रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन पे बारे में बात होती है उस क्लिनिक में, उसके स्पेशलिस्ट बैठते हैं वहाँ पे, वहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बातें होती हैं, सब्सटेंस एब्यूज़ जो इस एज ग्रुप को जो ड्रग एब्यूज़ या सब्सटेंस एब्यूज़ बहुत ज़्यादा देखा गया है, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, कैसे रिहैब किया जा सकता है अगर कोई इसके शिकार हो चुका है तो, वो हर तरह की मुसीबतों को हर समाधान के लिए क्लिनिक तैयार हैं। और ये दिल्ली सरकार का ये इतने सालों से प्रोग्राम चल रहा है जो हर शनिवार को ओपीडी में अलग से एडोलेसेंट क्लिनिक की ओपीडीज में जाके किशोर अवस्था अपने माँ बाप के साथ वहाँ जाके मिल सकते हैं, अपने इलाज करा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर उनको इलाज की ज़रूरत है या उनको कोई मानसिक सहारे की ज़रूरत है, मानसिक काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उसका भी यहाँ पर प्रावधान है।
0: अच्छा। और ये जो सुविधाएं हैं इनका लाभ उठाइए, और बहुत ज़रूरी है लाभ उठाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आजकल नोटिस कर रहे हैं, और पैंथर तोमर भी कुछ ऐसा ही लिख रहे हैं कि आज देश में कई किशोर टाइप 1 और टाइप 2 शुगर से सफ़र कर रहे हैं। क्या इसका मूल कारण खानपान है, और बाहर मार्केट में निकलते हैं तो मोमोज की दुकान पर किशोरों की लाइन लगी होती है, तो उनको क्या सलाह देंगी आप?
1: बिल्कुल, ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस इनको कहा ही जाता है, जिसमें आपके हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ ये जो डाइट आपकी जिसमें डेफिशिएंट है, विटामिन्स नहीं है, और कार्ब्स और फैट का जो इंटेक है बहुत ज़्यादा है, उस वजह से इस चीज़ों को और ख़राब करता जा रहा है। इसीलिए इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा वेट गेन का देखा गया है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीरियड्स डिले होना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिरेंज होना, वो टाइमली ना शुरू होना, फिर ये भी देखा गया है कि फीमेल्स में हेयर ग्रोथ होने लगती है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, उससे उनको बॉडी शेमिंग और दूसरी तरह के इश्यूज भी आते हैं जिससे वो और ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। फिर देखा ये भी देखा जाता है कि जो किशोर और किशोरियाँ हैं वो उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, उन्हें बॉडी शेमिंग होती है, और बॉडी शेमिंग की वजह से वो अपनी बातों को खुल के किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, या तो वो सोशल होना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, और खानपान अगर उन्होंने ज़्यादा ले लिया तो उनको ये गिल्ट होने लगता है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, फिर उनमें एक तरह की

0: इश्यूज आते हैं जिसमें वो बुलिमिया में जिसे कहते हैं उसमें वो वॉमिट करते हैं खाना खाने के बाद गिल्ट से,
1: अच्छा
0: तो उससे उनको और स्टमक इन्फेक्शन या और प्रॉब्लम्स भी, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं।
1: ओके। एक सवाल इन्होंने और भी लिखा है कि कई किशोर जिम जाते हैं, जिम में उन्हें तरह तरह के सप्लीमेंट्स खाने के लिए दिए जाते हैं, क्या बिना डॉक्टर की सलाह के ये सप्लीमेंट्स खाना सही है?
0: देखिए, मैं बिल्कुल सलाह नहीं करूंगी कि आप बिना डॉक्टर के सलाह से, सिर्फ जिम के इंस्ट्रक्टर के सलाह से इस तरह की चीज़ें शुरू करें, क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन ही वो सजेस्ट करते हैं, या वो ये कहते हैं कि पूरे दिन आप कुछ ना लेके 6 या 8 eggs, बॉइल्ड eggs ले लीजिए
1: अच्छा।
0: प्रोटीन्स के लिए या मसल बिल्ड करने के लिए। तो मैं इस चीज़ की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। हमेशा आपको एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले।
1: एक गुजरात से सवाल आया है खुशबू का, उन्होंने कहा है कि वेट पीनट्स हेल्प करते हैं इम्यूनिटी में, बॉडी की इम्यूनिटी में।
0: वेट पीनट्स मीन्स आप कह रहे हैं बादाम को अगर भिगो के लिया जाए तो।
1: जी पीनट्स की को।
0: जी, पीनट्स देखिए वो प्रोटीन है और अगर हम उसे यूज इस्तेमाल करें तो वो हर तरह से वो फायदेमंद है, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका स्टोरेज कैसा है, आपने किस तरह का बादाम जो यूज करें कहीं वो किसी कीटाणु से संक्रमित तो नहीं है, कहीं वो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हुए हैं, तो फ्रेश होने चाहिए आपके, बहुत पुराने नहीं होने चाहिए पीनट्स से, क्योंकि पीनट्स एलर्जीज बहुत देखी गई हैं अगर वो पुराने होते हैं
1: तो मतलब इनका ये है कि हम कई बार ना ज्यादातर हम फ्राई करके भून के पीनट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनको भिगो के खाने से
0: भिगो के भी खा
1: ज्यादा फायदा होता है?
0: ज्यादा नहीं, प्रोटीन है उसमें फायदा करेगा, वो इजीली
1: बट ये
0: डाइजेस्टेबल हो
1: मुझे
0: जाता
1: लगता
0: है।
1: है कि वो गर्म नहीं होगा, उसकी तासीर ठंडी हो जाती
0: वो
1: है।
0: एक्चुअली इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं जब हम कोई चीज को भिगो के थोड़ा फिर इस्तेमाल करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा पाचन पाचन को के लिए आसान हो जाता
1: ओके। और यही बाकी के ड्राई फ्रूट्स पर
0: बिल्कुल
1: भी लागू
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: जी।
1: तो हमारे पास टाइम तो अभी कमी है, लेकिन काफी कुछ आपने कवर कर लिया और बहुत अच्छी सलाह दी है और बहुत सारी बातें हुई हैं जो हमारे किशोरों को खास तौर पर काफी हेल्प करने वाली हैं।
0: इसमें एक चीज
1: जी
0: मैं,
1: बिल्कुल
0: सॉरी
1: ऐड
0: बबीता जी,
1: करिए।
0: एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, बहुत जरूरी है कि जो सरकार के जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पे इन किशोर अवस्था के लिए आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स भी उनको वीकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत फायदा, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है इनमें एनीमिया बहुत पाया जाता है, तो एनीमिया को क्योर करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है और आयरन फॉलिक एसिड भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है,
1: तो इस मदद का उनको लाभ उठाना चाहिए
0: बिल्कुल लाभ
1: किसी भी
0: उठाना
1: गवर्नमेंट
0: चाहिए
1: हॉस्पिटल में जाकर के।
0: बिल्कुल।
1: तो थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए डॉक्टर कृष्णा।
0: थैंक यू।
1: तो आज हमने बात की हेल्थी डाइट एंड फिटनेस फॉर एडोलेसेंट्स, और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी डॉक्टर कृष्णा भट्टाचार्य जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाजत, लौट कर आऊंगी जल्द ही। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और लेकर आई हूं प्रोग्राम आशियाना। और आशियाना में बात होती है परिवार की, रिश्तों की और उन खूबसूरत पलों की जो हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन दिन के आखिर में जिस जगह हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है वो है हमारा घर, हमारा परिवार। इसलिए परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा खास प्रोग्राम आशियाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले हैं शानदार गाने, दिल को छू लेने वाली बातें और कुछ प्यारे से किस्से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार गाने के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, परिवार के साथ भरपूर जी रहे होंगे आप अपनी इन छुट्टियों को। जी हाँ, और कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे अपने बच्चों की इन गर्मियों की छुट्टियों को ख़ास बनाया जाए, कैसे कुछ स्पेशल प्लानिंग की जाए जिससे कि वो इंजॉय कर सके। वैसे दोस्तों, परिवार वो जगह है जहाँ हमारी हर खुशी दोगुनी हो जाती है और हर परेशानी ना आधी रह जाती है। ज़रा सोचिए, जब हम छोटे थे ना तो हर छोटी सी बात को लेकर बस घर भागते थे। अच्छे नंबर आए हो, या फिर साइकिल चलाना सीख लिया हो, या फिर कोई परेशानी की बात हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, चोट लग गई हो, और ऐसे में सिर्फ एक ही नाम जुबां पर आता था, वो था मम्मा। क्योंकि हमें पता था कि हमारी खुशी सबसे पहले हमारा परिवार समझेगा, और परेशानी में मरहम भी परिवार लगाएगा, माँ हमारी देखभाल करेगी पूरे अच्छे तरीके से करेगी। तो चलिए अब एक शानदार गाना उसी परिवार के नाम, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले माँ का नाम तो याद आता है, और कहते हैं फिर परिवार के बाकी लोग बोलते हैं बस एक ही नाम तेरी जुबान पर रहता है, उसी का नाम जपती रहती है।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6।

0: 粉。
1: कोयल से तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
2: आय हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मोरडू 0.6 आकाशवाणी रेनबू पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में हम बात कर रहे हैं परिवार की और परिवार के साथ अपनी बॉन्डिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस पर हो रही है चर्चा। तो दोस्तों, आजकल ना हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन कई बार एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते कि ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। इसलिए रिश्तों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका कोई ना बड़ा फॉर्मूला नहीं होता, बस दिन के कुछ मिनट अपने परिवार को देना ज़रूरी है। एक साथ चाय पीना, लंच करना या डिनर करना, और साथ साथ दिन भर की बातें साझा करना, यही होते हैं वो छोटे छोटे पल जो बड़ी यादें बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हम अपनी मुश्किल है, परेशानी है, वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और वो बस आधी रह जाती है।

परिवार के सपनों की उड़ान ना बहुत खास होती है, बहुत मायने रखती है, और साथ ही साथ जो मायने रखती हैं वो होती हैं परिवार की छोटी छोटी बातें। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके फ़ोन में इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा मम्मी पापा, भाई बहन या फिर कोई ख़ास। क्योंकि ना मुश्किल वक्त में सबसे पहले ना हमें हमारा परिवार ही याद आता है। इसीलिए आज आपको करना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम, जब आप घर पहुँचें तो अपने किसी भी बोल दीजिए, फिर देखिएगा उनके चेहरे की मुस्कान ना आपका दिन बना देगी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों आशियाना में ना हम अपने परिवार में अपने परिवारी जन जो हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन, सबकी सेहत का ना ख्याल रखते हैं और कहीं ना कहीं उनको उत्साहित करते हैं कि वो योग करें या फिर अपना भोजन समय पर करें। और इसी कड़ी में जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, और इस खास मौके पर आकाशवाणी रेनबो लेकर आया है एक खास सीरीज आरोग्य पथ। और आज आरोग्य पथ में हम बात करने वाले हैं पवन मुक्त आसन की, जो योग का एक बेहद सरल और लाभकारी आसन माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि ये आसन शरीर में गैस की समस्या को कम करने और पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाने में, उसे बेहतर बनाने में मदद करता है। इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पीठ के बल लेटना होगा, दोनों घुटनों को मोड़कर छाती की ओर लाना होगा, हाथों से उन्हें पकड़ना है जैसे कि आप अपने घुटनों को हक कर रहे हों, फिर धीरे धीरे से सिर उठाकर अपनी चिन को घुटनों के करीब लाने की कोशिश करनी है। कुछ सेकंड तक आपको इस अवस्था में रुकना है जितना आपसे हो सके, और फिर वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाना है धीरे धीरे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ये आसन कर रहे हो तो आपको नाक से सांस लेनी है, मुंह बिल्कुल बंद रखना है। और पता है इस आसन को अगर आप रोज करते हैं तो पेट की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी, पाचन में सुधार आएगा, शरीर में हल्कापन आपको महसूस होगा। तो दोस्तों स्वस्थ जीवन की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और योग को

बिल्कुल दोस्तों, हमें भी आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन समय कुछ ऐसा है कि हमें आपको कहना होगा बाय बाय, क्योंकि अब आगे जो समय है वो है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT का। तो जाने से पहले आपसे बस इतना ही कहूँगी कि रिश्तों को समय दीजिए, अपनों को महत्व दीजिए और हर दिन परिवार के साथ कुछ खूबसूरत पल ज़रूर बिताइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, और साथ ही साथ आकाशवाणी रेनबो को छोड़कर कहीं मत जाइए।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
3: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
3: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
2: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।

0: नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
2: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
2: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
2: क्या कंचा चाहिए?
1: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
1: नहीं।
2: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: कितने सुंदर कंचे। ओह।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ा।

0: करता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
1: आ गया
2: जॉर्ज, दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
3: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है?
2: मास्टर जी,
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
3: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
3: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
3: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
3: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
3: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
3: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
3: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
3: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
3: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
3: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है,
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो।
3: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
3: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
3: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
3: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
3: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
3: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
3: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
4: मास्टर जी, नोटिस है।
3: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
3: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र

0: ऑन द बेंच।
1: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा। वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
2: बच्चों एक एक करके आओ,
1: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
3: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
1: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
4: जॉर्ज को साथ लेकर चलू तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
1: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
3: जी मास्टर जी।
1: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीलचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात

0: जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: यह देखो माँ।
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो।
3: आ, आ।
2: 1 2 3।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं।
4: FM Dragoban
5: 103 MHz.
4: News, music and entertainment.
5: FM
4: 103 MHz.
6: You're now tuning to Akash Fani FM Dragoban at 103 MHz.
4: FM Dragoban
5: 103 MHz.
4: News, music and entertainment.
5: FM
4: 103 MHz.
6: This is Akash Fani Kohima, the news headlines. Nagaland Governor Nand Kishore Yadav reviews status of Dhansari Zubza, Dimapur to Kohima New Line Railway Project and the integrated redevelopment of Dimapur Railway Station with officials of Northeast Frontier Railway. Northeast Frontier Railway seeks cooperation of Nagaland Government in facilitating approach roads to upcoming railway stations and addressing issues related to encroachments and riverbed mining near major railway bridges. Nagaland Chief Minister Dipiru arrives in Mokwaisang Meghalaya to attend the Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition Round 26

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: FM Dragoban
5: 103 MHz
0: News, Music and Entertainment FM 103 MHz।
6: गुड इवनिंग, सबको मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है AIR FM ट्रैकपैन 103 मेगाहर्ट्ज हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम, आपका फेवरेट प्रोग्राम लाइव फोन इन। तो मैं हूँ आपकी आरजे टिया और आप सुन रहे हैं द फेवरेट चैनल, योर फेवरेट रेडियो चैनल FM ट्रैकपैन 103 मेगाहर्ट्ज। मेलोरी शमाटो दिमापुर टेनिंग मोन एंड ट्विन सॉन्ग आप सुन रहे हैं अभी 100.1 मेगा हर्ट्स, वो खबरा होनिया से 101.8 मेगाहर्ट्स, फेक ब्राहनिया से 102.1 मेगाहर्ट्स एंड जिनेबुतु खान होनिया से तो प्रोग्राम थे 101.2 मेगाहर्ट्स। तो आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ और वक्त हो चला है आपके फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम लाइव फोन इन। तो अगले एक घंटे तक मैं रहूंगी आप सबके साथ। मैं लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन बॉलीवुड गाने, आपके बहुत मीठे मीठे संदेश एंड ऑफ कोर्स नॉट फॉरगेटिंग ढेर सारी बातें। तो अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है, फेवरेट गाना है, किसी को यू नो एक फेवरेट गाना डेडिकेट करना है, कोई खास फरमाइश करनी है, या बस दिल में ये चाह है कि रेडियो पे अपनी आवाज सुनी है, रेडियो दे निजो ला आवाज सुनी बोले मुन जाए ऐसे के लिए, तो जरूर हमें कॉल कीजिएगा। अभी है अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी की ग्रैब करिए। हमारे जो फ़ोन नंबर्स है, हम वहाँ की कॉल करो निमित्ते 0370-224-3036 ऐसे एक बार फिर नोट कीजिएगा 0370-224-3036। सो ढेर सारी बातें होगी, तो आपको बस फ़ोन उठाना है, हमें कॉल करना है और बनिए एफएम ट्रैकपैन के साथ पूरे एक घंटे तक। तो चलिए बिना देरी के शुरू

0: तो लगता है हमारा पहला फोन कॉल आ चुका है, तो जल्दी से उनका फोन उठाते हैं और बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम
0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आपका स्वागत है।
1: जी। थैंक यू। मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री, तो तनुश्री आप बहुत दूर जगह से हमें कॉल किया है, तो आप बताइए आप किस जगह से हैं, आपने फिर से क्या फिर से बोलेंगे?
1: ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र
0: ओ,
1: से
0: महाराष्ट्र सतारा से। तो तनुश्री,
1: जी।
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है पद्मावत
0: पद्मावत।
1: जी।
0: और कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैम,
0: पद्मावत।
1: मैं गा कर सुनाती हूँ
0: जी।
1: जी। नैनो वालों ने छेड़ा मन का जाला,
0: बहुत
1: घर
0: ही
1: के मधुशाला, मेरा चैन रेन मेन अपने साथ ले गया, ऐसा करके गाने के बोल है
0: यस यस, नीति मोहन का गाना है ये, बहुत ही अच्छा गाया है आपने। तो किसी को आप डेडिकेट या किसी को आप ये खास गीत किसी के लिए फरमाइश कर रहे हो?
1: जी मैम। पहले तो मेरी क्यूट क्यूट मैम
0: जी, थैंक यू,
1: है,
0: धन्यवाद।
1: और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है अमोल भस्माचारी, और हमारे सभी श्रोताओं को।
0: ओह, थैंक यू सो मच, सबको बहुत पसंद आएगा, खासकर मुझे तो बहुत पसंद आया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो वो फ्रेंड है, आपके जो वो मित्र है, वो भी ये गीत सुन के उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो तनुश्री, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग,
1: ओके, बाय बाय।
0: बाय। तो तनुश्री, मैं रिक्वेस्ट करेंगे ना पताइशे, नन अदर देन फ्रॉम द मूवी पद्मावत, नैनो वाले ने। तो इतु गाना तो कुरीशे नन अदर देन नीति मोहन, म्यूजिक है संजय लीला बंसाली, लिरिक्स लिखा है सिद्धार्थ गरिमा, फ्रॉम द मूवी पद्मावत, नैनो वाले ने।

0: তো দুসরা কল ভি আহি যাইছে, তো ফোন উঠাই দিয়েছে। হ্যালো,
1: হ্যালো, নমস্কার দিদি।
0: নমস্কার, আপনার স্বাগত হ্যাঁ
1: জি, ধন্যবাদ। গ্রাম হীরাপুর, জি গ্রাম হীরাপুর, জেলা সিহোর, মধ্য প্রদেশ সে ভগবান সিং পরমার বল রহা হুঁ দিদি।
0: ভগবান সিং ফ্রম মধ্য প্রদেশ। তো
1: জি জি,
0: আপ বতাইয়ে আপ কোন সা গীত সুননা পছন্দ করেঙ্গে
1: দিদি। ফিল্ম কা নাম তো মে বতা দেতা হুঁ আপকো। ওর দিদি, পহলে মে ইয়ে বতানা চাহুঙ্গা কি আজ আপ হিন্দি বহুত আচ্ছা বোল রহি হ্যায় দিদি, মতলব আপকো বহুত আচ্ছি হিন্দি আতি হ্যায়।
0: ধন্যবাদ
1: जी दीदी। फिल्म का नाम है बेखुदी और गाने के बोले मम्मी डैडी मेरी शादी करवा रहे हैं।
0: देखो
1: बेखुदी बेखुदी।
0: आप श्योर है कि यही फिल्म है, फिल्म का नाम?
1: जी बिल्कुल श्योर है दीदी, बेखुदी नाम है फिल्म का। गाने के बोले मम्मी डैडी मेरी, हाँ मम्मी डैडी मेरी शादी करवा रहे हैं। और दीदी ये नहीं मिले तो है ना, आप फिल्म का नाम है वापसी साजन की, इसको ढूंढ लीजिएगा।
0: अच्छा, तो लगता है कि ये फिल्म हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आपने दूसरा फिल्म बोला है वो कौन सा बोला था?
1: वो है दीदी, फिल्म का नाम है वापसी साजन की।
0: बाप
1: वापसी साजन की।
0: लगता है ये फिल्म भी हमारे पास नहीं है।
1: तो दीदी आप
0: कोशिश करते रहेंगे या बोलिए दूसरा।
1: तो आप है ना साजन फिल्म का सुना दीजिए, जी जरूर होगा आपके पास। हाँ, पहली बार मिले हो, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया।
0: पहली बार मिले है, एसबी बाला सुब्रमण्यम।
1: जी बिल्कुल दीदी।
0: तो ये गीत आप किस खास इंसान के लिए फरमाइश कर रहे हैं?
1: अरे दीदी, हमारे तो दीदी बहुत सारे दोस्त हैं, आपको भी डेडिकेट रहेगा। और अभी आप प्रेम सिंह सिसोदिया जी, गंगाधर सावनकर जी हैं, अमल भस्मतारी है, विमल भस्मतारी है, रमेश पात्रे जी हैं, अंजलि भस्मतारी हैं, और हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप पे बहुत सारे सदस्य, उनको भी डेलीकेट रहेगा दीदी। और त्रिपुरा से बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश तेली जी, राकेश जी हैं राजस्थान से, और राजस्थान से पूरन वर्मा जी हैं, और राकेश जी हैं शिमला से, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। और शिवा लोहट जी हैं हमारे मध्य प्रदेश से, विदिशा से।
0: तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो कितने सारे दोस्त हैं वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: और हमारी हमारी छोटी सी नन्नी सी श्रोता है तनुश्री, महाराष्ट्र से, बिटिया को भी डेलीकेट रहेगा।
0: तनुश्री को भी, तनुश्री ने कॉल किया था पहले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर जो इंसान, हर जो शख्स आपने नाम लिया है वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। आपकी फरमाइश हम जरूर सुनवाएंगे। धन्यवाद
1: धन्यवाद दीदी।

0: सुनने वाले और स्पेशली मैम आपको डेडिकेट रहेगा।
1: धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी फरमाइश आपको और आपके अपनों को और मुझे भी बहुत पसंद आएगा, तो ऐसे ही हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेगा FM चाकोपेल। धन्यवाद
0: बिल्कुल
1: मैम। तो इतिया रिक्वेस्ट DSA Mohabbate FM ra Jasbin Narwala, Udit Narayan, Shweta Pandit aro none other than Jatin Lalit laga music ase film ase Mohabbate very iconic Anand Bakshi ki bol hai Sony Sony.

0: Well, dear listeners, Mui Khan, another call ahi ase, to uthai di ase. Hello.
1: Jai Mata Di.
0: Hello. Hello.
1: Mera naam hai Puran Verma.
0: Ji, ji. Puran ji, namaskar.
1: Rajasthan. गांव का नाम अंतनल बुगला से बात कर रहा मैडम
0: जी जी बोलिए पूरन जी कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे
1: जी मैडम फिल्म का नाम है धड़कन
0: धड़कन
1: जी
0: जी और धड़कन फिल्म से कौन सा गीत धड़कन फिल्म में तो बहुत बढ़िया बढ़िया गीत है तो कौन सा गीत आप पसंद करेंगे
1: ना ना करके प्यार है मैं कर गई ये गाना
0: ये तो बहुत ही अच्छा गीत है तो ये गीत जो है आप किसी को लाइक स्पेशली आपके कोई चाहने वाले हैं या आपके फ्रेंड है किसी खास को डेडिकेट करना चाहेंगे
1: जी मैडम सबसे पहले तो आप है मैडम क्योंकि आप दो दिनों के बाद में आते हो तो मैडम जल्दी आया करो थोड़ा हमको इंतजार रहता है मैडम काफी
0: दिन वो तो है टाइम तो कभी कभी लग जाता है लेकिन जो चीज बाद में इंतजार के वक्त मिलता है वो बहुत अच्छा होता है ना
1: हाँ खैर वो तो है पर इतना भी इंतजार मत किया करो मैडम कराया मुझके श्रोताओं को
0: और मेरे अलावा किसी और को भी डेडिकेट करना चाहोगे

0: हाँ जी मैडम, मेरा दोस्त है ना काफी है, सबसे पहले तो आपको वो है ही, और दूसरा मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी बाई है, शिवा लोहार है, और विमल है, अमल है, वो आपके कार्यक्रम में जितने भी लाइव कॉलर जो आखिरी तक आपसे बातचीत करेंगे उन श्रोताओं तक सुनाना चाहता हूँ, और जिसका भी नाम भूल गया उन श्रोताओं के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ, अभिनाथ जी है और संगीता जी है और आशुतोष देवनाथ।
1: बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको और आपके अपनों को पसंद आएगा, और खासकर उन श्रोताओं को जो अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। ऐसे ही हमें हमेशा प्यार करते रहिए और ऐसे ही FM चकोपन सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
0: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।
1: तो ताइबा रिक्वेस्ट करा निशना इतिया प्रोग्राम टी डी से धड़कन फिल्म 2003 फिल्म ब्रा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज, नदीम श्रवण लगा म्यूजिक और बोल लिखे है समीर, नाना करते प्यार।

0: तो आप निकान होनी थे किसे धड़कन फिल्म पर नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे अब निकान नीचे होनी ऐसे AIRFM ट्रैक पैन 103 मेगाहर्ट्ज़ दे योर फेवरेट कार्यक्रम योर फेवरेट प्रोग्राम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम लाइव फोन इन जहां आप करेंगे फरमाइश और मैं करूंगी आपकी फरमाइशें पूरी। तो आप निकान नीचे प्रोग्राम थे इतिया ही कनेक्ट करी से और किनिया कनेक्ट करवो किनिया कॉल करवो कोई ले दो ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस ऑन 3 0 3 7 0 2 2 4 3 0 3 6 हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: मैम जी हम तो काफी दूर से फोन कर रहे हैं
0: जी। आप अपना नाम और शायद हो सके तो अपनी जगह जो है वो बताएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि काफी दूर से, काफी दूर देश हो या प्रदेश हो, राज्य हो, जहाँ से भी हो आप कॉल कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपना परिचय देंगे?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोयड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं मैम जी।
0: बरेली से हो आप? अरे वाह, तो बताइए कौन सा गीत, कौन सा गाना आज आप सुनना पसंद करेंगे?
1: हाँ मैम जी, हमारा कई दिनों बाद आज कॉल लगी है, ट्राई करते करते बड़ा दिल को खुशी हो मिल रही है मैम जी।
0: आज आपकी लॉटरी लग गई है, तो ये जो मौका मिला है उसको जाया मत कीजिए और रिक्वेस्ट कर दीजिए कि कौन सा गीत जो है वो आप सुनना पसंद करेंगे आज रेडियो पे।
1: हाँ जी, तो मूवी का नाम रहेगा रंग।
0: रंग,
1: हाँ, इसमें कोई सा भी सॉन्ग चला देना, बहुत ही अच्छे सॉन्ग है इसमें।
0: अच्छा,
1: रंग मूवी का
0: बहुत सारे सॉन्ग है, तो बाबुल सुप्रियो का है, उदित नारायण जी का है, सोनू निगम, अलका याग्निक, सो कौन सा वाला सॉन्ग जो है आपको बहुत ही

0: बहुत ही पसंद है, आपकी फेवरेट है।
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।
0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, दोनों साथ में तो नहीं है, लेकिन एक गीत है खुदा की कसम,
1: करा दीजिएगा
0: ये
1: रंग
0: गीत है
1: मूवी। हाँ जी, आपके
0: जी।
1: पास कौन सी रंग मूवी
0: ये
1: है?
0: शायद ये फिल्म जो है 2012 ये वाली है शायद, आप दूसरी मूवी की बात कर रहे हैं। काफी मूवीज जो होती है सेम टाइटल होती है, तो ये वाली है रंग 2012।
1: नहीं मैम जी, वो तो वो है, इसमें एक गाना है तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें मेरी क्या कथा है, ये वाली।
0: अच्छा, तो ये वाला ये रंग जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप दूसरा गीत या दूसरी फिल्म की फरमाइश जरूर कर सकते हैं।
1: अच्छा जी, तो आपके
0: जैसे कि
1: पास
0: आप
1: दलाल
0: उनका
1: दलाल
0: वो
1: दलाल
0: जो
1: मूवी होगी?
0: दलाल,
1: हाँ जी,
0: दलाल
1: मिथुन
0: मूवी
1: चक्रवर्ती।
0: शायद, माफ कीजिएगा, हमारे पास शायद नहीं है ये मूवी। दलाल, दाल है लेकिन दलाल नहीं है।
1: अच्छा,
0: हाँ, सोचिए सोचिए, हम आपका इंतजार
1: तो मूवी
0: करेंगे।
1: तो कई है, अनेक
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: मूवी,
0: कई
1: तो
0: है
1: हमें।
0: अनेक। हाँ बोलिए, नई
1: हाँ
0: मूवी भी बजा सकते हो, नई मूवी की गीत जो है वो भी बहुत अच्छी है, पुरानी मूवी है,
1: हाँ जी, तो
0: लाखों
1: मोरा
0: की
1: मूवी नहीं, मोरा होगी मोरा।
0: शायद मोहरा मूवी है हमारे पास। देखा, चौका
1: अच्छा
0: लग गया। तो मोहरा मूवी में कौन सा गीत जो है, बहुत बहुत ही पॉपुलर गीत है, बहुत पॉपुलर गाने हैं इस मूवी के, ना कचरे की
1: जी, तू
0: धार
1: चीज बड़ी है,
0: देखी
1: मस्त मस्त।
0: बिल्कुल, ये गाना बहुत ही मस्त है। तो ये गीत जो है आप किसी खास को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ मैम जी, हम डेडिकेट तो करना चाहते हैं कि हमारे भगवान सिंह परमार जी जो हीरापुर से और मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, उनको डेडिकेट रहेगा। उन्हीं ने ये व्हाट्सएप पे डाला, तभी हमने ट्राई किया और
0: अरे
1: लग भी
0: अरे
1: गया
0: वाह,
1: मैम
0: बढ़िया है, तो
1: जी।
0: सही इंसान को आप डेडिकेट कर रहे हैं।
1: हाँ जी, और हमारे इसमें लोकेन्द्र वर्मा हैं, गौतम राय जी हैं, और हमारे गंगाधर सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं, और हमारे प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, और कानपुर से आरजे पूनम जी हैं। इस इन्हीं को डेडिकेट रहेगा,
0: अरे
1: और
0: वाह,
1: जितने लाइव श्रोता सुन रहे हैं सभी को।
0: बढ़िया है बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच।
1: जी
0: ये जो गीत है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके खास लोग जो है वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, आपका जो फरमाइश आपकी जो फरमाइश है वो सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: नमस्कार मैम जी।
0: तो ताई बार रिक्वेस्ट करें निशना इटे आ प्रोग्राम ती दी ऐसे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त फ्रॉम द मूवी मोहरा। और इतु गाना दो बिशी बार, काफी बार इस गाने की रेंडिशन हुए है, लेकिन ये जो है ये है ओरिजिनल गीत फ्रॉम द मूवी मोहरा। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, विजू शाह का म्यूजिक है और आनंद बख्शी लगा लिरिक्स।

0: अविनाश तेली, पूरन वर्मा, राम नरेश पंजर, भगवान सिंह परमार और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के साथ में एक गाना सुनना चाहता हूँ।
1: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा गीत है, मुझे भी बहुत पसंद है ये गीत। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और ऐसे ही हमेशा FM ट्रैक पर सुनते रहिएगा। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो आज लगा प्रोग्राम थे आखिरी गीत दिए से फ्रॉम द मूवी दुश्मन, चिट्ठी ना कोई संदेश, जगजीत सिंह लगा आवाज थे, म्यूजिक दिशे उत्तम सिंह। तो ये तो लगाना लोगों थे ही प्रोग्राम तो समाप्त करबो निशना से, बोले भी टाइम बची ले तो जी हुई ले भी नेक्स्ट गीत भी बचा होबो, तो लेट्स सी। तो ये तो दिए से फिल्म को निशना चिट्ठी ना कोई संदेश फ्रॉम द मूवी दुश्मन, दुश्मन तो 1998 लगा असे और ये तो गाना तो लिखी से आनंद बख्शी और ये तो फिल्म थे ओलाई संजय दत्त, काजोल और आशुतोष राणा। तो प्रोग्राम थे इतने भी को निशना टाइम तो आसे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि और मोर कॉलर्स का नहीं वो, तो या लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग 1998 लगा क्लासिक चिट्ठी ना कोई संदेश।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के खर्च के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: 360 degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: FM Dragoban
5: 103 MHz.
4: News, music and entertainment. FM 103 MHz.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: वेलफेयर स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की

0: गया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO

0: दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: FM 트래커 밴. 뉴스 뮤직 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠.
1: नमस्ते, सलाम, आदाब, आप सबका फिर से स्वागत है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम आरजेस चॉइस. आप निखन होनी ऐसे AIRFM ट्रैकपेन 103 मेगाहर्ट्ज़ से हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम विथ योर दोस्त विथ योर होस्ट आरजे थिया. तो प्रोग्राम शुरू करी दिया से और प्रोग्राम लगा शुरुआत दे दिया से धारक फिल्म पर आज गोखले গোখলেলা বাস্তে আর্টিস্ট তো আজে গোখলে আছে আর মিউজিক তো আজে অতুল তাই জনবি দিছে লিরিক দিছে অমিতাভ ভট্টাচার্য ফ্রম দ্য মুভি ধড়ক দিয়েছে পহলি বার.

0: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो। कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

0: मन तो बहुत है लेकिन इसी गीत के साथ मेरा वक्त आ चुका है, तो इजाजत दीजिए माय डियर लिसनर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कंपनी और आपकी इस बहुत खूबसूरत शाम का हिस्सा मुझे बनाने के लिए शुक्रिया। तो इतिया अपनी यहाँ एफएम रेनबो लो लिंक हो जाबो और कल सुबह सीधा 6 AM FM ट्रकोपेन लगा ट्रांसमिशन खुली जाबो। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड नाइट।
1: FM Tracoban
2: 103 MHz.
1: News, music and entertainment.
2: This is FM Tracoban.
1: FM 103 MHz.